नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारे दोस्तों को आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, और कल रात की नींद भी आप सभी की अच्छी से यस गई होगी। और यस, आज की सुबह आप सभी ने अच्छे से गुजारा होगा, यस शुरुआत की होगी एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ दोस्तों, यस। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज क्या है, यस आज वाई मे डे है। तो हमारी तरफ से, आरजेवीडी की तरफ से वाई मे डे की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज तो छुट्टी भी है, स्कूल जाना नहीं है, कॉलेज जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, तो आप सभी बहुत फ्री होंगे और अपने अपने घरों में आप वक्त बिताएंगे, है ना? यस, आप अच्छे से वक्त बिताइएगा, और जब भी आपको मौका मिलेगा हमें संदेश भेजना, ठीक है? यस, हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी का दिन अच्छे से, खुशियाँ और आनंद से बीते दोस्तों। और मैंने कहा था ना कि आपसे कि जिंदगी में आपको खुश रहना है ना, तो आपका दिल सच्चा होना चाहिए, ठीक है? यस, दिल सच्चा होना बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, ठीक है? यस, शिंगनुना कन शिंगनुन कोंगजो आहियान हिम कन दुचुआन कन रिल रोही अथियांग हिमंगाई मिदिक कन्नी अंगाई तरो। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं हमारे इस खंड को और सुनते हैं मेरी तरफ से चाहे जुबा बहुत ही खूबसूरत गीत सोनू निगम की आवाज में गाया गीत और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल, मेरे प्यारे दोस्तों, इस खंड का सबसे पहला गीत, मेरी तरफ से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत, चाहे जुबां से कुछ ना कहो ए मेरे हम सफर। आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। जिस इंसान को हम बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद प्यार करते हैं ना, जुबां से भी अगर ना बोले ना, तो हमारे मतलब व्यवहार से, कैरेक्टर से उन्हें दिखता है कि हम उनको कितना चाहते हैं, है ना दोस्तों। और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, और आप जुड़ते जाइए FM ZOO 100.7 के साथ, क्योंकि आपकी दोस्त RJ वेली आप सभी को प्यार भरे, प्यारे प्यारे गीत सुना दे जाएगी दोस्तों। अगले गीत में मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्या प्यार करोगे मुझसे, बहुत ही खूबसूरत गीत है, सोनू निगम और अलका याग्निक के ही आवाज में गाया गीत। और इस गीत के सुनाने से पहले यहाँ पर मेरे दोस्त अजामते पएंगते मिंगमोयते अते ओ की तरफ से संदेश आया है, चान जाम अहियान, हेलो RJVL, नमस्ते रोंती, आपको भी नमस्ते जाम, वो इंच सेल ना छतक ने आ ट्वांग दकाई ड्यूटी थे ना दु सकना इतान कलान मोल मोल जे पेली समी सोंग सोंग खा इड्यूटी पुई ने इन पथुम ता इन पथुम तान ले कंट्रोल रूम ड्यूटी तेले ड्यूटी ऑफिसर तान पोतिन पुसांग मा मते नुपा मिशन वेंग खंग मी तान ले उमा ट्वांगा मिशन वेंग ले उची पे आंगुर दुआ तपा मे म्याल विन ड्यूटी नुआम उले अरुण दी नि जाम महान ओले जाम फेल छिन ले मे मसे लाई रोन थन सा गुची पे आंगुर दुआ तपा ही इंग तिंगे ले ओ तुनला ही अरे लु तुका के मापो ही बिया पो मिनरन ओ बिंगाई लाओ ओ स्टेटस ते यरोन सिन गाई लाओ रे रेंग जाम उची पे ही अरे ए इंग तिंगे ले ओ एंग पोन इसे दम छतोरा गा इला तरो बे से इला चान वेंट पे चो चोलते निया आ ऑल वे दे तोरा पोंगा इला ओ चान ओले एक पोन इसे चान पा एंग हियान आर जेवीएल मु इखात ले दे तो आ इंगे ओम ले मे चान इ दम छा अंग चुमो इसे इसक मेल खा छफेल तो एम ए पा एंग इट्स ओ पा एंग मिन हन मु ले चान मो छाई ती डॉन लुतुक मो अदम चन तो अमोम के मापो ही नुआम के ती चन नी मो चुआन मेंग मोई ते अहियान वान ल वाय में दे चे बे निले नुआम ले अरोन तिया ओले नंग पो वाय में दे चे बे ओ मेंग मोई ते मिजो ही कन वान ने अनी दर ओ वाय में ते कन हन ने या kan han din te hi aro pui ka ti ke chu chiat ni a lek phei hi chuan hei an poi mo na hi alang zual ka ti wai me de lo om te hi a lu ka ti wong nong se tur po in o du sak na ka hlan ve mol mol ani o chuan wina nuam de win wai me de te kha lo mang ula in lama poin lo mang mo mo chol te ani a yes luang de win hun in lo man thei na du sak na kan hlan chewa ole to chaliye jaisa ki maine kaha hai ki agar zindagi mein aapko khush rehna hai to aapko ek sachcha insaan banna hai theek hai ek sachcha insaan kabhi kisi ko matlab kabhi kisi ka dil nahi dukhata hai kabhi kisi se jhoot nahi kehta hai yes aur kabhi kisi ko dhoka nahi deta hai theek hai dosto to chaliye हम तो वैसे इंसान नहीं है, इसलिए हम खुश रहेंगे, है ना। अपनी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अपने सारे गमों को भूल जाते हैं और प्यार भरे गीतों की तरफ चलते हैं। और अगला गीत दोस्तों मैं सुनाना चाहूंगी, क्या प्यार करोगे मुझसे, मेरी तरफ से आप सभी के

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कि आप प्यार करोगे मुझसे। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। यस, तो चलिए। यस, क्या प्यार करोगे मुझसे। अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम तो करते हैं, है ना दोस्तों। कभी कभी पूरी दुनिया का प्यार कम पड़ जाता है, कभी कभी पूरी दुनिया का प्यार कम पड़ जाता है। प्यार तो बस एक ही से मिल जाए ना तो काफी है ना दोस्तों। प्यार तो बस एक ही से मिल जाए ना तो काफी होता है। ठीक है, तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। और उससे पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। संदेश आया है मेरे दोस्त वी कुंगते की तरफ से। कुंगते की नर जेम वी एल वाई में दे से बे ओ नंग पोले ओ कुंगते हे के पो वाई में दे लोम तुरी अमुना का ओम तो ए ड्यूटी नोम ओ रोन दिया ए खाई अब लोम ओम वे कुंगते इमन पुई थे आ ओ ओम चू लोम ओम ले मे आ नोम दविन हु लोम मंग रो ओ चुआन। दुर्गे जी की तरफ से संदेश है। दुर्गे जी ने हमें गुड मॉर्निंग कहकर संदेश भेजा है और दुर्गे जी आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, और हम चाहते हैं कि आपका दिन आज अच्छे से बीते। और दोस्तों, मेरे दोस्त जा महिया ना जेवी अल इमोगन उची पे अंगुर द्वा तपाचू अतले रोल छुआ मा आ नुपुई नई ती तका अचांग छे ए मा अबुआ न्यांगे ऑफिस ना ने नाउ एक पॉइंट सुख ngai nen abai thai ngot angering raja vl ani hi chu phut sang wak lo lo lo ang o ranti ni aleng pachuni se adam chatura be se potila in savain acche se wak bitayega dosto hai na। yes, to jaisa ki maine kaha tha ki kabhi kabhi puri duniya ka pyar kam pad jaye तो भी प्यार तो बस एक ही से मिल जाए ना तो काफी है ना दोस्तों। वो भी सच्चा वाला, ठीक है, छोटा वाला नहीं। तो सुनते हैं चलते चलते अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अभिजीत और कायाग्नि के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। यस, चलते चलते चलते चलते हम किस मोड़ पे आ जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हम जैसा सोचते थे वैसा होता नहीं है। जो भी हो, जिंदगी है। और दोस्तों कहते हैं कि दिखावे का रिश्ता मत रखो, ठीक है। यस, मुझे ना दिखावे का कोई भी रिश्ता पसंद नहीं है। और मैं जो भी रिश्ता निभाती हूँ ना दोस्तों, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे वो प्यार का हो, किसी के साथ भी मैं दिखावे का प्यार नहीं रखती हूँ। और आप भी मत रखिए ना, आप भी मत रखना। अगर आप किसी को मन से दिल से चाहते हैं ना, तो साथ दीजिए, वरना जल्दी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, तेरे मेरे ध्वनि बनो शाली की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ध्वनि के आवाज़ में गाया गीत, आप सभी को तेरे मेरे गीत पसंद आए होंगे। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी, क्यों? यस, श्रेया घोषाल के आवाज़ में गाया गीत है क्यों। क्यों मीन्स व्हाई। मैं भी पूछती हूँ कि जिंदगी से कि व्हाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया। चलिए जाने दीजिए। और मतलब लाइफ में सब कुछ मिलता है दोस्तों, है ना। हम सबको लाइफ में सब कुछ मिलता है, बस वही नहीं मिलता जो दिल चाहता है ना दोस्तों। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, क्यों, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

पल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत क्यों यस आप सभी को पसंद आया होगा। तो हमारे भी सवाल है, क्वेश्चन है कि जिंदगी से कि क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन बुरा हमारे साथ क्यों होता है? तो चलिए, खैर जो भी हो, जिंदगी है हमें कुछ सिखाने के लिए। शायद ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। और अब दोस्तों, इस खंड के लिए आप सभी को आखिरी गीत सुनाने का यस समय आ चुका है दोस्तों। आप सभी को गीत सुनाते जाने का मन तो करता है, लेकिन हमारा समय खत्म हो गया है इस खंड के लिए। और मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर 11:20 पर, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह हमारे साथ सुनते रहना एफएम 100.7। और दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक अनजान किताब जैसे है, ठीक है। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता, ठीक है। इसलिए आप होशियारी के साथ रहिएगा, ठीक है। लेकिन कभी दिल मतलब अपने दिल को संभालिएगा, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, ठीक है। यस, जिंदगी में खुश रहना है तो हमें एक सच्चे इंसान बनने के लिए दोस्तों हमेशा कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस आखिरी गीत के साथ, तेरे इश्क में नाचेंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। तो आप सुन रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7 और हिंदी के खंड में आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वियली। और इस खंड में जिन्होंने भी मुझे संदेश भेजे, उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहती हूँ। और आज आप सभी अपना समय अच्छे से बिताइएगा, ठीक है दोस्तों। और ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और जिन्होंने भी सुबह का नाश्ता खाना नहीं खाया है उन सभी के लिए आरजे वियली की तरफ से जय द्विवेक।

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ज़ोय 100.7 दोस्तों। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे आज के हिंदी के दूसरे खंड में दोस्तों। और आप सभी ने आपकी दोस्त आरजे सांगते के साथ उनके FB के पेज पर लाइव शो प्रोग्राम पर आप सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा, एंजॉय किया होगा उनके साथ दोस्तों। तो चलिए हम भी दोबारा हाजिर हैं आप सभी का मनोरंजन करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। और आपको ढेर सारे हिंदी के गीत सुनाने के लिए और आपसे बातें करने के लिए दोस्तों हम हाजिर हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे साथ अच्छा लगेगा और आपको हमारे पेश किए गए गीत ज़रूर पसंद आएंगे दोस्तों। और हमें आपके भेजे गए संदेशों का भी इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो चलिए, आप सभी का दिन समय अच्छे से बीत रहा होगा दोस्तों। चलिए हम भी दुआ करते हैं कि आप सभी का समय दिन अच्छे से बीते दोस्तों। तो आज का ये जो दिन है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। तो चलिए अपने इस समय को, दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए सुनते हैं ढोलना मेरी तरफ से। इस खंड का सबसे पहला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यस ढोलना गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत, इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। और हम चाहते हैं कि आपका समय यूं ही अच्छे से बीतता रहे दोस्तों। यस, और अब हम जाएंगे अगले गीत की तरफ। और यस, मैं चाहती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीते और मुझे आपके प्यारे प्यारे संदेशों का भी इंतज़ार है दोस्तों। और वैसे भी आज तो छुट्टी है लेकिन मेरे दोस्त जाम के लिए छुट्टी नहीं है लेकिन वो चाहते तो छुट्टी ले सकते थे आज, लेकिन वो इतने हार्ड वर्किंग पर्सन है ना, क्या करे जाम यस, तो चलिए आप जहां पर भी होंगे आप अच्छे से रहना, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी साथी के साथ, है ना दोस्तों। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को के आवाज में गाया, यस, इस खंड का दूसरा गीत तू जो मिला। यस, तू जो मिला गीत मुझे बहुत पसंद है और आपको भी जरूर पसंद आएगा दोस्तों। यस, और इस गीत को बहुत ही पसंद करने वाले हमारे दोस्त उचिपिया, पता नहीं क्यों आज वो इतने आजकल एफएम जो ओए पर आते ही नहीं हैं क्या लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत बिजी हैं आजकल। यस, तिरोजाम उचिपी तो तुलना बुआ ए मेरे माँ, लेकिन कोई बात नहीं, मिलना थे वक्ति जो कनरिंग वे था वो नहीं सुनी से ओ सुहान अदम चतुर अबे से बोकिला सुहान। और दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है ना दोस्तों, मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं मिलती, पर दोस्तों हम जब जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े, है ना दोस्तों। यस, मोहब्बत में अगर कोई हमसे खफा है, हमें छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, है ना दोस्तों। हम मोहब्बत करना नहीं भूलेंगे क्योंकि जिंदगी हमारा साथ हमेशा देती है जब तक हम सच्चे इंसान होंगे। अगर हम सच्चे दिल से प्यार करेंगे किसी के साथ भी, जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा हमसफर साथी जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। यस, और तो चलिए सुनते हैं फिलहाल मेरी तरफ से तू जो मिला के आवाज में गाए गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, इस खंड का दूसरा गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

बल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे सुनाए गए आप सभी के लिए तू जो मिला के आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, है ना दोस्तों? यस, तू जो मिला। जब कोई स्पेशल इंसान हमें मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हमारे हो या ना हो तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई हमारा दिल तोड़ देता है तो बहुत बुरा लगता है। यस, लेकिन हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे और आप भी हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे, ये हमें ये तो हम जानते ही हैं। यस। और तो चलिए, मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे के संदेश की तरफ। और एजाम कितना लाख दे लो थोन वे लो इवान चरंग एम आरजे सी एस सांगतेन जामा ही चरंग तो पर अलाउ ती चेन या ओ है लाउ दिलीट खाल रो ए ओ चुआन उचुपिया मैसेज कंदोंग लो मैं 跟谁跟谁呀？哦，跟狗错，睇你，嘿，莫，嗯，跟狗错，我跟你做别人啊。昨晚啊，我这边 लिखते हैं कि वो इन सूजिंग लमा के नतलांगा ऐहे ओ वन फेल्चिंग तक एम ओ चुआन जो ए कमा ना के थोका तुन मई आखान का हंसो ओय छिन देख देगा आज ये वेली सेगमेंट इन चन ना तुरिन अ बैकग्राउंड म्यूजिक अलो रिले यार या या का साउंड का अप द वक वक मई अनी ए अन कन ना थो मे की लेट इट स्वाल कन ना थो मे की के ति स्वाल पल पिंग पुंग लवांग चुमो Ole, uchi bia message for kan dong le ta. I can o chou chan do na niang zu de ro zam. De zhe li fil hao ab sabhi ke is tarah sandesh ho ga intezar rahega aur hum aaj bahut hi enjoy karenge dosto FM Zone 100.7 ke sath. Agar aapko bhi samay milta hai to humse baatein karne ke liye aap zarur sandesh bhejiyega FM Zone 100.7 par dosto. Agar aapko number nahi pata hai na to main aapko baad mein bataungi, theek hai? Yes, aur aaj ka din aap sabhi ke liye acche se aur aanand se beete dosto. To aaiye aapke samay aur din ko aur bhi zyada yes acha banane ke liye agle geet ki taraf चलते हैं। और मेरे दोस्त स्पेशल दोस्त उचिपिया पो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अच्छे से करे इस गीत के साथ, इस गीत को सुनने सुनने के साथ। यस, हम नहीं चाहते कि वो काम अपने काम को कुछ मतलब अपने काम में कुछ गड़बड़ी करे, हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो चलिए फिलहाल मेरी तरफ से सुनते हैं दिल कह रहा है, कुणाल गांजावाला की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कुणाल गांजावाला की आवाज़ में गाया गीत तेरी धड़कनों को छू लूँ। यस, दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूँ। यस, दिल तो बहुत चाहता है लेकिन दिल जो वो चाहता है वो हमें मिलता ही नहीं, क्या करें, है ना दोस्तों। तो चलिए, अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी दोस्तों को। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत। और उससे पहले मेरे दोस्त जेदा जामा की तरफ से संदेश आया है और वह नहीं कन्वन रहे। ए मैम चौन जामहियान आरजेवीएल इड्यूटी पुइनु आरजेसीएस सांगते खान अलाइफ लाइन थिल छदे मिन लाउ पौसा सका kalom te asin o next song i tan sau aron te ani chabok lau o zam delete kha ro ko ti kha pal ani kha pal chuan til ka lau la lok amale mo life lai hi chuan kan chuak dei ze la anom lo ni mo he til eng mani e kan lau ti bua yang ti hi a lau ve china chuan o chuan ओले। तो फिलहाल अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे, आप सभी प्यारे दोस्तों से, कि जो इंसान सच में लॉयल होता है, मतलब जो इंसान सच में लॉयल होता है वो ना पैसा देखता है ना स्टेटस, ठीक है दोस्तों। जो इंसान सच में लॉयल होता है वो ना पैसा देखता है ना स्टेटस, वो सिर्फ दिल देखता है, ठीक है। यस, वो सिर्फ दिल देखता है। और जब उससे सच्चा प्यार मिलता है तो वो अपने इंसान के लिए, अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, ठीक है। इसलिए हमेशा लॉयल रहिए, ठीक है। यस, तो चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, आप सभी के नाम।

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है दोस्तों, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, प्यार के रिश्ते में, प्यार के संबंध में अगर आप जितना लॉयल बनोगे ना दोस्तों, आपको मतलब अच्छा लगेगा और आपका रिश्ता हमेशा जिंदगी भर चलता रहेगा। और अगर आप अपने प्यार से मतलब अपने प्यार को यस धोखा देंगे ना, तो आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संदेश आया है मेरे दोस्त जामा की तरफ से। जामा आज भी एल रिन लौलाई तकिन उचे प्या मैसेज इन दोन थुत्सु इट्स योर मामा इन ई ओ लोई ई ओ लोई वे का लोम ले अंत्या अमीक ओइलो ओजाम इदुती पियांग इन उची पिया सखमिंग इलम रिना सबोका तुन चुम चु इलम स्वा तो लवे का तिबे नेक्स्ट सॉन्ग उची पिया ने इन कही तान सा वरंती अनि जामे हियान ओले। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपके संदेश के लिए और आपके प्यार के लिए भी। और इसी तरह हमारा प्यार एक दूसरे के साथ यस हमेशा बरकरार रहे, है ना जाम। यस और तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। दिल क्या करे, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत है दोस्तों। यस तो जैसे कि जाम ने जो मेंशन किया है उची बिया का, तो यस हम बेशक यस हम मिस कर रहे थे उची बिया को। यस उची बी गंगाई लो दुख से नहीं ओ, क्योंकि आप एफएम ज़ोर पर आते नहीं हैं। अगर आप नहीं आते तो हम मतलब हमारा ये जो एफएम ज़ोर 100.7 बहुत सोना पड़ जाता है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरा साथ देने के लिए, हमें सुनने के लिए। और कहते हैं ना दोस्तों कि मांगी हुई चीज कभी अपनी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब मांगी हुई चीज अपनी नहीं हो सकती, ना वक्त ना रिश्ता ना शख्स ना प्यार। ठीक है, तो माही एन माही दिल लो तुर मो कंथिल दिल का कंता अनि थे लो चुवाई कंता अनि चुआन अमाले माइन अरुण कल मई तुर मो अरुण कल मई झेलनी तीना चुमो जाम। तो चलिए, तो कभी भी किसी से कुछ मांगना मत। ठीक है, जो आपका है ना वो आपको जिंदगी में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए हमेशा और अपना काम अच्छे से करते रहना। यस उटीपी भी हमें अपने काम करने के साथ साथ सुन रहे हैं शायद, तो चलिए ओ नौ पंगते ने कान अन रिलुआई लुआई ओम सियांग। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत दिल क्या करे मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को दिल क्या करे उदित नारायण और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे, है ना दोस्तों? यस, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं यस कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे सुनाए गए गीत जरूर पसंद आए दोस्तों। और हम चाहते हैं कि आपका समय अच्छे से बीतता रहे दोस्तों, और अगर आपको हमसे बातें करनी है तो आप ही कर सकते हैं, गीत फरमाइश करनी है तो कर सकते हैं दोस्तों। और कभी छोड़ के मत जाइएगा FM 100.7 को, अगर आपके पास समय होता है तो हमसे बातें करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका इंतज़ार हमें इस FM 100.7 पर हमेशा रहता है, ठीक है दोस्तों? लेकिन आप सभी से अलविदा कहने का दोस्तों समय आ चुका है, और मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने खंड को लेकर 2:35 आधे करोन ले तो दो ननी सुमो यस। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको वेस्टर्न म्यूजिक आरजे नुमदोंगी और मिजो लव सॉन्ग दे वगैरह वगैरह और जैसे सॉन्ग दे भी आपका साथ देगी दोस्तों, ठीक है? मैं वापस आऊंगी 2:35 पर, और आप सभी अपना काम अच्छे से करते रहना और छुट्टी अच्छे से स्पेंड करना दोस्तों, ठीक है? यस, और मैं जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि कि प्यार तो उनको मिलता है जो दिखावा करते हैं, ठीक है? यस, प्यार तो उनको मिलता है जो दिखावा करते हैं, दिल से प्यार करने वालों को तो सिर्फ धोखा ही मिलता है। तो चलिए, आप कभी भी धोखा मत दीजिए किसी को, ठीक है? सच्चा वाला प्यार कीजिए अगर आपको किसी से प्यार है तो, ठीक है? और यहाँ पर एक संदेश मेरे उटीपिया की तरफ से आया है। उटीपिया ही ना जे वीएल कहो ना प्यार है दिला खा इन म्यालिम ओ नहीं सियांगे, लेकिन मूड नहीं है प्ले करने का उटीपी, लेकिन आपने फरमाइश की है तो हम जरूर प्ले करेंगे आपके लिए। पेपर वर्क थोक में पा इन था का चा कोम है मैं जल जा मतान करों डेडिकेट बोकांगे बोकांगे अरोन तीनी उची पे हियान ओ साम चू उची पे नलन अरोन थन सकते नहीं ओ कहो ना प्यार है ओ कहो ना प्यार है। यस, इस गीत को ना सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त उची पिया बहुत ही स्पेशल दोस्त ने फरमाइश की है तो हम आपको सुनाएंगे ये गीत उन्होंने अपने दोस्त जिलजामे के लिए डेडिकेट किया है, और हम भी आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं 2:35 पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो आप अच्छा इंसान बनिए, ठीक है? दिल साफ होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, ये गीत, इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ZOI 100.7। दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज का दिन आप सभी ने अच्छे से बिताया होगा, है ना? यस। और आप आज उतने बिजी नहीं होंगे क्योंकि आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है ना दोस्तों। और आप सभी ने अपने अपने जगहों पर अच्छे से वक्त बिताया होगा, गुजारा होगा दोस्तों। यस, हम चाहते हैं कि आपका दिन, आपका समय यूं ही अच्छे से हमेशा बीता रहे दोस्तों। लेकिन हमने क्या कहा था कि आपसे कि अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है ना, तो आपको एक सच्चा इंसान बनने के लिए कोशिश करनी है दोस्तों। यस, दिल साफ होना चाहिए, है ना? यस, तो चलिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हिंदी के खंड में दोबारा आप सभी के लिए हाजिर है आप सभी की दोस्त राजे वीएली। और दोस्तों, मैं इस खंड में आप सभी को सुनाना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत। यस, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत सुनते हैं और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा, ठीक है? यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत। और ये खंड है ना दोस्तों, आज के लिए हमारे लिए आखिरी खंड है। इसके बाद तो मैं आप सभी को, हम सभी, यस, आपकी दोस्त आरजे सांगते ही चली गई, आपकी दोस्त आरजे नुंगनुंगी भी चली गई और अब मेरी बारी है इस खंड के बाद तीन बजे के बाद आप सभी से विदा लेने का। दोस्तों, आइए मेरे साथ हिंदी के खंड में डूब जाइए, इंतजार रहेगा आप सभी प्यारे दोस्तों का।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस खंड का सबसे पहला कि चाहे जुबान से कुछ ना कहें ए मेरे हम सफ़र, और आप सभी को पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यस, और दोस्तों आप सभी के संदेशों का इंतज़ार है, तो चलिए लेट मी तो संदेश आया है पएंगा और उचित भैया की तरफ से और हितेंद्र दास जी की तरफ से भी संदेश आया है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ूंगी। इस अगले गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूंगी दोस्तों, थोड़ा इंतजार करिएगा, ठीक है? थोड़ा इंतजार करिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी आपके संदेशों को। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप हमें संदेश भेजते हैं, हमें सुनते हैं। तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। यस, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत है मेरी महबूबा। यस, तो चलिए इस खंड का दूसरा गीत सुनते हैं मेरी तरफ से पएंगते उचिपियते और हितेंद्र दास जी के लिए। ये जो अगला गीत है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कुमार सानू के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत मेरी महबूबा। यस, जिन जिन के महबूब हैं हम उनके लिए ढेर सारे विशेस भेजना चाहते हैं कि उनका रिश्ता हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ चलने से पहले यहाँ पर आपके संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। पाएंगा खान ओ पाएंगा खा ओ पाएंगा मैसेज का कता तुर मोक लौती या मासे ओ का मैसेज तुर लो निलवा ई टाइम का कलो एन सुअल पला चुआन दार नीले मिल सोमथु पर्याता हियान उची पी अजान और उची पी या की तरफ से मुझे संदेश मिला है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। यस, और पएंग अभी मुझे सुन रहे होंगे। यस, और पुके वाला मैसेज पो रोन थेगा रोन दुई ने सको मई ओले इन लिम नते इन नुई थे न तुर ते ही लो मो कन दु बेर सु और उची पे लिखते हैं कि आज वीएल इस इला सेगमेंट अलौने देर मई ट्वा तकिन होंग से और रोनतिया ओले थैंक यू सो मच उची पी आपके इस स्पेशल कंसर्न के लिए। यस, और आप ही अपना ख्याल रखना, ठीक है उची पी ओ और हम आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है वी रियली मिस यू ओ उची पी अगर आप वी को काट सकते हैं वी के बदले आई लगा दीजिए और ऐसा ठीक रहेगा, ठीक है और बहुत बहुत शुक्रिया उठी भी आपके संदेश के लिए। और यहाँ पर हितेंद्र दास जी ने लिखा है गुड आफ्टरनून आरजे जी नमस्कार। यस, आपको भी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? यस आई एम रियली फाइन और वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग सॉन्ग शो। यस, थैंक यू सो मच हितेंद्र दास जी आपको इस तरह संदेश भेजने के लिए। हमेशा हमें सुनते रहना FM 100.7 और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ना ये FM 100.7 आपका साथ हमेशा देती है। यस, और पुके वाला ओ ओ कति सवाल उके वाला ह्यान आर जे वी एल तु ए मो गई कने तु ना ह्यान अरोन ति वेला तुंगे गई सु मिल लो शिल वेला चुआन ओबेगा सांग ते ह्यान तु ना आर जे ड्यूटी ही ए लो ए जो से ना चान ये हुन मन नुआम ले हरोन ती ने अब आगे जग चार लो बयांग ओ गंजे बे तो त्या बेल खो गंसर बे दू तो लो तो चलिए फिलहाल गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत। यस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत जरूर पसंद आएगा। कुमार सानू और अलका याग्निक के ही आवाज में गाया गीत है दोस्तों। यस, और आप सभी प्यारे दोस्तों के भेजे के संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ने अभी यस मैंने जिनके संदेश पढ़े हैं उन सभी दोस्तों के लिए उची पियते हितेंद्र दास जी आप और पुके वालते यस ओमेगा सांग देते आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए ये अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज हमारे साथ हमारे सभी के खंडों के गीत आप सभी को पसंद आए होंगे और हम बहुत खुश नसीब है कि हम आपका साथ दे पा रहे हैं FM 100.7 पर। और आप सभी के प्यार भरे संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से दोस्तों। आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इतने अच्छे हैं। यस, जैसे आपके भेजे गए संदेश इतने मीठे हैं ना, वैसे भी आपका चेहरा, कैरेक्टर जो भी हो बहुत अच्छा होगा, बहुत स्वीट होगा दोस्तों। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। हमारा समय ख़त्म होने वाला है और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यस, आप सभी का मतलब आप सभी को हम बहुत मिस करेंगे दोस्तों। जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। यस, और हमेशा खुश रहना, ठीक है। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी हर रोज़ एक नया सबक देती है, ठीक है। ज़िंदगी हर रोज़ एक नया सबक देती है, बस हमें इतना करना है कि हर गिरने के बाद खुद को और मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लूंगी और ओ ओके वाले हैं आई का सोइंगम ल उजामा उजामा ले उठी पे यते कहलाव रंती वेलनी अन ल ओम ल ए मै मसेंगो रो गंगाई ल मन तो ल ओ कचार मन तो डोन बॉक्स सी ल वानी दा गा मिन शिल दोनिया ठीक है। ओले और दोस्तों, मेरे जाने का समय आ चुका है एक गीत के साथ और हूं करने के लिए तो तुकमनी इतनी वेल। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बे कू। ओ आज हमें सपोर्ट देने के लिए, हमें सुनने के लिए FM 100.7 पर, जब तक हम नहीं मिलेंगे दोस्तों, आप सभी भी अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, ठीक है। बाय बाय, बे कू। ओ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में संयुक्त प्रेस वक्तव्य दे रहे हैं। श्री फ्रिट्ज़ो ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री फ्रिट्ज़ो से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीका की नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर था, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया था। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के दौरान पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। और फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams.

ये रुद्राक्ष मेरा है। इतने हजारों साल बाद आज ये मेरे लिए निकल आया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका असली हकदार

यहाँ आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्यारे श्रोता, मैं हूँ आपके आरजे नुभई। और जी हाँ, आज के शाम आपके शाम को रंगीन बनाने के लिए मैं यहाँ फिर से हॉट सीट पर बैठी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा साथ पसंद आएंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम शुरुआत करेंगे आज के सबसे पहला खंड। और ये गीत है आप सभी लोगों के नाम, तो आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान के आवाज में सनो एक पल चैन। तो आइए सुनते हैं सनो एक पल चैन।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था हीरो नंबर वन और इस गीत को ये हाँकते पा बिलखुत लेरुन खन। ओ तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की और मुझे यहाँ हाँकते पा है आर्जे नुबई का लथन मिम्प्लै सक वांगिन कलोम जिया एन तिर नान इलप्ले ले तुर जो जो खा इतान का लान फाइ फे के अरुण ती या कन वन लोम एम के निपो नेक्स सॉन्ग खा इतान कन रुन ती ले फे कंग ओ एल बी रुन थे हिया नार जे नु बॉय पीप्लू तीन खा ओ यूं रोई थी टाइप ही एन चोपल नुआई में अरेम चुआन ओ इतान ले एफ एम गाई थू जो जो तान ओ रनतिया अल्लाही रनति थले लोको आइन जोम फेका कशु शंग थलत लो एल बी रन थे का ओ चुआन मा मुनी रम लो थे अन आ जे नु बॉय अ फर्स्ट नान चुआन हाफ गर्ल फ्रेंड फीम अमी बारिश का ओ के इचुआन इन रुआसुर हिनुआम कति जो का तुन लाई रुआसुर दान फे हिचु अनुआम ची असुर चेर चेर अतिया a romantic ti deu ni hi ma mu ni hi an tun lai ro sur dan chu mom chuan in john gos boy hian nu te namaste hun man hun nuam tak mangla i playlist te nang ma tan aron ti boka ji ha aap ka bahut bahut shukriya barish chu kan zong nga nakina next song nga kan ram play yang to ji ha mer pyare shota aap ha ma ge barenge हमारे अगले गीत की और हमारा अगला मसे बारिश ही कन हो तो आचू वंग कंप्लेन हाल मैदों में तो आइए सुनते हैं बारिश और ये मामूनी रमलो रुन थान कन सवाई तांतियांग ओ

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, लेकिन अगला गीत सुनने से पहले हम फिर नजर डालेंगे आपके संदेशों की ओर। और मुझे यहाँ मिला है अर्जुन, ओ अधिक लौजो का नहीं है, लुइजो का नहीं है। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और जी हाँ, हमारा अगला गीत होगा दीवाना है ये मन और ये चोरी चोरी छुपके छुपके फिल्म का गीत है आप सभी लोगों के नाम।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था दिल तेरा मेरा दिल, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, चोरी चोरी छुपके छुपके फिल्म का गीत है, जवानी हितेंद्र दास जी की ओर से संदेश मिला है। वो लिखते हैं, गुड इवनिंग आर्य जी, आपको भी हमारी ओर से गुड इवनिंग। अब समय आ गया है इस खंड का हमारा आखिरी गीत सुनने का, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होंगे कहानी, और इसी गीत के साथ आज हमारा पहला खंड आप सभी लोगों से मैं विदा लूंगी और फिर लौट के आऊंगी। जरा समय देखती हूँ, शायद 7:45 पे मैं आप लोगों के पास फिर से लौट के आऊंगी। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिएगा, और जी हाँ, आइए सुनते हैं हमारा आखिरी गीत कहानी।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए

0: जाए और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मूड है उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे। तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में चार वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत न हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं। तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े। लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है कि जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान यह है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता वो थोड़ा दूरी पर भी जाता, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, आरटीएससी बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, आरटीएस यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55

0: मिनट में दिल्ली से मेरठ आदि पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं एनसीआर के एरिया में, इस समय वहां अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहां लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रेवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है। बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, मोटे रूप से तो 3 शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जो फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 की योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपने अपने स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेडी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेडी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे।

0: और उसको कहेंगे एक साल में इसको वापस करना है, यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिलाकर के अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग होती है, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात। पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है, कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको ये लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता
1: जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता, आप सभी लोगों को आज रात के हिंदी का दूसरा खंड में आपकी आरजे नुबई फिर से यहाँ स्वागत करती हूँ। और जी हाँ, इस खंड में हम सुनेंगे अलग अलग गायकों का अलग अलग गीत, यानी कि फिल्मी गीत नहीं लेकिन पॉप सॉन्ग सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले फाल्गुनी पाठक द्वारा गाया गया और गीत की बोल है मैंने पायल है छनकाई।

तो जी हाँ, मैं प्यारे श्रोता, ये था फाल्गुनी पाठक द्वारा गाया गया गीत। और ये गीत जो है, इस गीत को डीजे रेमी ने रिमिक्स किया गया है। गीत की बोल है, मैंने पायल है छनकाई। अब हम आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा अगला गीत होगा के द्वारा गाया गया, और गीत की बोल है प्यार के पल। तो आइए सुनते हैं प्यार के पल।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था के आवाज में, और गीत की बोल है प्यार के पल। ये गीत बहुत ही खूबसूरत है। हमें यहाँ एक संदेश मिला है ललदिन पुया फल कॉन्वे अंगलाई की ओर से। आज प्ले ले तुरखा नंग माता ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ले कठियां ते व्यंग शंग शंग मी ते तान ले कठियां ते दौर पुया मी ते दार लो न मी ते तान अरुण ते नी ललदिन पुया फल कॉन्वे अंगलाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गीत जो है वो आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया है उन लोगों के लिए हम समर्पित करेंगे, और खास करके आपके लिए। तो हमारा आज का आखिरी गीत होगा फाल्गुनी पाठक की आवाज में मेरे घाघरे, और इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी और लौट के आऊंगी 8:30 बजे। तब तक के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा, सुनते रहिएगा FM जवाई। Hey, pretty girl.

नमस्कार आप सभी लोगों को। आज रात के हिंदी का तीसरा खंड में आपके आरजे नुबई आप सभी लोगों का यहाँ फिर से स्वागत करती हूँ। और जी हाँ, ये खंड है हमारे चॉइस का, यानी कि मैं अपना पसंद का गीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी पसंद का गीत आप लोगों को भी पसंद आएंगे। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:33 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 9 बजे तक। तब तक आप सुनेंगे मेरे पसंद का गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं खामोशियां गीत से, और ये गीत मैं आप सभी लोगों के नाम करना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं खामोशियां।

तो मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था खामोशिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग, और गीत की बोल है खामोशिया। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, क्योंकि हमें आपकी ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। तो हमारा अगला गीत होगा अरिजीत सिंह के आवाज में, और गीत की बोल है तू ही दिश्ता। तो आइए सुनते हैं तू ही दिश्ता आप सभी लोगों के लिए।

तो ये था दिश्ता और ये अरिजीत सिंह की आवाज में है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा अगला गीत जो है वो है, आप सभी को पता है ये गीत आजकल बहुत ही मशहूर है और किसी के स्टेटस में भी आते हैं, किसी के रील्स में भी आते हैं। तो आइए सुनते हैं ओथम्स की आवाज में सुकून, आप सभी लोगों के लिए।

तो मेरे प्यारे श्रोता, ये था सुकून और ये ऑथम्स द्वारा गाया गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा अगला गीत जो है वो है दिल जंगली फिल्म से, और गीत की बोल है गजब का है दिन। तो आइए सुनते हैं गजब का है दिन।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? गीत की बोल है गजब का है दिन, लेकिन ये कयामत से कयामत तक फेम का गीत नहीं है, ये गीत है दिल जंगली फेम का गीत। बहुत ही खूबसूरत गीत है, इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ रिमिक्स किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे दिस इज दिस लव किस्मत कनेक्शन फेम के गीत से।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था ये था इज दिस लव। ये गीत बहुत ही खूबसूरत है और ये किस्मत कनेक्शन फिल्म का गीत है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस खंड के हमारे आखिरी गीत के और जाने तो

0: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता, आप सभी लोगों को आपके आरजे नुबई की ओर से हमारा आज रात का इस आखिरी खंड में स्वागतम। और जी हाँ, ये हमारा आज रात का आखिरी खंड है, इसलिए मैं इस खंड में आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। और जी हाँ, अभी आप लोग मत सोइए, हमारा इधर कार्यक्रम जो है ये चालू है, इसीलिए आप हमारा यहाँ पे जो हम गीत आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे वो आप हमारे लिए सुनिएगा। तो हम शुरुआत करेंगे डीजे चेतास द्वारा गाया गया गीत, और गीत की बोल है जब कोई बात। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा आज रात का आखिरी खंड, और जब कोई बात है गीत की बोल आप सभी लोगों के लिए।
1: Hey Atif, what's up?
2: All good, Chetas.
1: Well, I've just completed this super project of mine, and I need a vocalist for that. So are you free to come to Dubai?
2: Bro, I'm in. Let's do it on Monday.
3: Sounds good. Perfect. So I'll see you next Monday, right?

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था डीजे चेतास और आतिफ असलम की आवाज में, और गीत की बोल है जब कोई बात मिंगमोई ते ही अनुभव इतान ले ngai thatu te tan kala meng kar e ti oi kan van lom em lom meng kar achan chu a khwar thak ve thi na nya. और मुझे यहाँ ही थे रदास जी की ओर से मिला है. हेलो आरजे जी, नमस्कार. आकाशवाणी का आइजोल स्टेशन FM जोई बैंड 100.7, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स शो. अपनी केमोन आछो बंगाली, हाउ आर यू इंग्लिश? अमी भालो आछी बंगाली, आई एम फाइन. इंग्लिश में आप अनुवाद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अमी आकाशवाणी के भालो भाषी, आई लव आकाशवाणी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमें बंगाली सिखाइए और हम आपको मिजो भाषा सिखाएंगे. जी हाँ, और आप लोग अपनी के मोन आछो, ये जो है ये बंगाली जो है ये हम जब उधर कोलकाता में रहते थे तो हम बोलते थे तुम्हें आश्चे आ तुम्हें आ नहीं नहीं नहीं आ भालो आशे, भालो आशे हम बोलते थे और वो लोग बोलते थे भालो भालो. यानी कि वो कहते थे कि भालो आशे का मतलब है आप कैसे हो, यानी कि हाउ आर यू. तो हम बोलते थे भालो भालो. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमें ही बंगाली सिखाइए, हम आपको मिजो भाषा सिखाएंगे. ललदिन पुया फल कौन वेंग ला ही अन आर जे प्ले ले तुर्खा नंग माता ले लो आई खवे जोंग जोंग तान ले आर जे जोंग जोंग तान ले कठियान ते वेंग शंग शंग अमी ते आर सी अतुआ मुआन जो वा वाल पुया रिन मो या वाल पुया लो मते पुया आ आ चिन चिना ओ ते तान अरुण तीन ओ अन भिंग ला अस्वीट लम बॉक्सिया मो ते चौन इन दुर्गेश नागनपुर हियान इन आर जे गुड इवनिंग नमस्कार अरुण तिपो का. आप लोगों को भी हमारी ओर से हमारा प्यार भरा नमस्कार. अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा साथ रहे तू मेरे, सनम और जुकबिनी की आवाज में.

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था सनम पुरी और उसकी धर्म पत्नी जुगबिनी की आवाज में। हितेंद्र दास जी की ओर से हमें संदेश मिला है, वो लिखते हैं, थैंक यू आरजे जी, बंगाली एंड इंग्लिश दोनों भाषा हम लर्न करो ये जी। ठीक है, हम दोनों सीखेंगे बंगाली और इंग्लिश। और दुर्गेश नागनपुरे, गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार, वेरी नाइस सॉन्ग, शुक्रिया आपका भी हमारी ओर से, शुक्रिया हमें सुनने के लिए और संदेश भेजने के लिए। हमारा अगला गीत जो होंगे वो है, मैं ढूंढ रही हूँ, पाठशाला लाही कन्याई थका तो है मैं तो रंगाई थाईला। तो आइए सुनते हैं पाठशाला फिल्म का गीत, और गीत की बोल है ए खुदा।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था पाठशाला फिल्म का गीत, और गीत की बोल है ए खुदा। मारे महिया नारजे कलाउंगाई था रेंग ए अरुण तिया कन वाहन लोम थीन तक एम मिन लाउंगाई थाक चर चर खा कई नी तान पो नुआ मा मिन लाउंगाई थाक लाउ हि चोनी नि हे अखोहार थाक कति खमो एसएमएस देखा इन मना नेटवर्क ते नै थचा मिन लाउ थन जेल बकुला। ओ तो हमारा अगला गीत होगा शेरशाह फिल्म से, और गीत की बोल है राता लंबिया इन सफाई तान ले dor hey zana dor in hong min lo ngai tha zong zong te le motore chuanga fm lo ngai tha ho zong zong tan le shutdown ke liye min ngai tha tu zong zong tan kha no to aye sunte hain rata lambia।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था रात अलंबिया और ये शेरशाह फिल्म का गीत है। जाने जो जयललिता मार रंचे लौथा तमासे इलादू पेरखा करम प्ले सकते ओ नंग मातान ले वी एलितान तो लल दिन पु ये फल कॉन्वेंग लाई हन आर जे प्ले ले तुर का नंग मातान ले लोंगाई खवे जोंग जोंग तानो अरुंतिया चौनिन आ तुआंग दे वे निहो दो ने अरुंतिया वाहन फिल चीन तक एम chuanin kan lom em em bokani laldin puya kha ab hum phir aage badhenge hamare agle geet ki aur aur hamara agla geet hoga dil hai tumhara film ka geet chhaya hai jo dil pe kya nasha to aaiye sunte hain chhaya hai jo dil pe kya nasha aap logon ke liye।

0: तो मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था छाया है जो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा फेम का गीत है, के वाला ही अनाज है नुबो इन खेल इन पा इन खलोंगाई थरंग चेन्या और अरंतिया ए तेरे मैं इन खेल खलो इन पास है लुला चान इन मिलोंगाई था चर चर बकरो और चंचू अखोर थाक छीन के ती है तुन लाई पे जो इन खेल इन हुन लाई अनिया। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, समय आ गया है इस खंड का हमारा आखिरी गीत सुनने का, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होंगे शायद। और ये गीत जो है ये मैं आप सभी लोगों के लिए समर्पित करूंगी, और जी हाँ मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के पास फिर से लौट के आऊंगी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:26 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 10:30 तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। आप लोग इस गीत को सुनिए और अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और इसी गीत के साथ मैं आपकी आरजे नुबो या आप सभी लोगों से विदा लूंगी। और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होंगे लव आजकल फिल्म का गीत, और गीत की बोल है शायद। और ये गीत जो है ये माहमुनी रमलोत खान अदु ए मवांग खान इन अभी तकिन माहमुनी रमलोत तान पोखन रोनती यंग। तो आइए सुनते हैं शायद।
1: करूं कि तुम स्पेशल हो
2: ये भी मैं बताऊं? मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?